लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बो तीर्थ पव्या ते तोलव्या बो पे किया दही दुख दिया सहु जी अपना किया अन्न खाया साध गवाया बो दुख पाया दू

0: सच काल कुड़वरता काल काल कु बेताल बियो भी बतले गब को गवे दाल जे को दा गुर तिहर तो होए नानक पाहे बारा कूरे रंग न सोए पै बिच खुम चढ़ाई शर्म पाव तन होए नानक भगती जेर पै कूड़े सोए न कोई महला पहला
1: लब पाप दो राजा मैं ता कुड़ो आशिकदार काम नेब सद पुछे बै रह करे विचार अंधीरायत ज्ञान भी होनी अंधी रैयत ज्ञान भी होनी पाए प्रेमरदार ज्ञानी नचै वाजे वावे रुके श्रृंगार ऊचै कु कहवा दा गावे जोदा गा विचार मूर्ख पंडित हिकमत होंजित संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार।

0: शब्दं ब्राह्मण है, कतरी शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा।
1: एक

0: अपराधी दुआ निभजनता मेरे गाहि शीश निवाइए कथिए जरद कुसुध जाहे मोहला पहला
1: पर पुस्तक संध्या बाजन सिल पूज बबल समादंग मुख झूठ बपोख संसारन त्रैपाल ते हाल बचारन गल माला तिलक लाटम दोय तोती बसुरक पाटंग जय जानस ब्रह्मं कर्मं जय जानस ब्रह्मं कर्मं सभ्य कट ने चो कर्मं कौनान ने चो त्यावे विन सतगुरु वाट न

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जहे रूप रंग अर रेख पेख कौ कहन सकत केहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तोज की जय कोट इंद्र इंद्राण शाव शहाण गणी जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वणतृण कहत तव सर्वनाम कथे कवन

दुख सुख लेख लखाया लिखड़ा शाह नाटल जिहड़ा पुरब कमाया बै साचै लिखिया अमृत बिखिया जित लाया तित लागा कामण यारी कामण पाए बहु रंगी गल तागा होशी मत भया मन होशा गुड़ सा मक्खी खाया

फिर गर्भास न पर्यारे फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश

0: एक भूले नाव हो थे हो थाव हो गुर शब्दी सच खेलो।
1: फिर अगलिया पंक्तियां च गुरु साहब कहिंदे असीसां देवो भगत करे वो, कहिंदे असीस दिओ कि भगती करो भाई, तुसीं हमेशा उहदी प्रेमा भगती विच जुड़े रहो, ये असीस दिओ। मिलिया का क्या मेला मेलो, है ना, जिहड़े मिले हुए ने कहिंदे उहनां दा क्या मिलना, है ना, उते उहदे विच मिल गए। जिवें पहलों जिक्र किया गुरु साहब जी ने भी तुहाडा मेल सदा बने, जिहड़े नहीं मिले उहनूं असीस देनी मिल जाण दी, भी तुहानूं मिले उह करता तुहाडा उहदे नाल मिलाप बणे। जिहड़े मिल गए उहनां लई असीस की है, तुसीं कदे विछड़ो ना। गुरबाणी ते सर्व सांझी है ना। हुण जे आपां कह दईए जी मिलण वालियां लई ते असीं अरदास कीती, मिलण वालियां नूं ते असीस दित्ती आ वी भाई तुहाडा मिलाप करते नाल बणा, ते जे कोई उह कहिंदे मैं ते पहलो ही मिलिया होया, कहिंदे भाई तूं मिलिया असीस तैनूं वी दे रही बाणी, तूं कदे विछड़े ना, तेरा मेल बणिया रहे। ये ना ना वे दुनियावी तौर उत्ते दुनिया के झमेलिया के उलझ के, दुनिया के झूठे धंधिया के कूड़ के उलझ के तेरा वो विछोड़ा पै जाए। तू संसारक तौर उत्ते जिहड़े झमेलिया फसिया है, करता तेरे उत्ते दया करे, करता तेरे उत्ते बख्शिश करे, तू उन्हां झूठे धंधियां उन्हां झमेलियां तो अपने आप नूं उपराम रख के उस करते दे संजोग दा आनंद सारी जिंदगी माणदा रहे, असीस रूप विच। असीसां देवो भगत करेवो, मिलिया का क्या मेलो, एक भूले नावो, एक रब जी दे हुक्म तो भुले हुए ने, थे थावो मूल तो ही भुले हुए ने, गुर शब्दी सच खेलो। उन्हां नूं मत उन्हां नूं असीस ये देनी है कि भाई तुसीं गुरु उपदेश कमावो, गुरु उपदेश कमाउंदिआं होइआं ते सच दे नाल अपना मिलाप जिहड़ा वह करो, सच्ची खेड खेडो। ये जीवन पंथ उत्ते झूठ विच मस्त ना रहो, कूड़ विच ना लगे रहो, सगों सच नाल जुड़ के ते सच रूपी खेड नूं खेडो। ये असीस उन्हां नूं देनी है एक भूले नावों हे थावो, जिहड़े भुल गए जां इउं कह लईए भी जिन्हां नूं चेते ही ना रिहा, जिहड़े अपने टिकाणियां तों सत संगत रूपी थां टिकाणियां तों भुले होए ने, चंगे गुणां तों भुले होए ने, औकड़ां विच ग्रसे होए ने, उहनां नूं मत उहनां नूं असीस दिंदिआं आखणा भाई तुहानूं सत संगत रूपी जिहड़ा मिलाप है वह मेल तुहाडा हो जाए, सत संगत रूप टिकाणे का मिलाप हो जाए, तुहाडे अंदर चंगे गुण आ वसण, तुसी धर्म दे, तुसी सहज दे, तुसी संतोख दे, तुसी सत दे, तुसी दया दे धारनी बन जाओ, ये चंगे गुण तुहाडे जीवन विच आउण ते तुसी सत संगत रूप टिकाणे उत्ते अपना वसेबा कर सको, और उत्थे वसेबे सदका तुहाडा मिलाप फिर उस सच्चे नाल बन आवे। चेता रखो गुरु उपदेश सदा कमावो, जदों गुरु उपदेश कमावोंगे फिर सच दी खेड सवरेगी, फिर वो खेड सवरेगी, फिर सच नाल मिलाप होएगा, फिर ओही मेल है जिन्हों मालक कहिंदे पाही वो मेल तुहाडा कदे भी ना चुके।
0: जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाणा,

मुख उजले यति छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासवी सहाय। अर्जन अर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नाउ नदयावै ताए।

आवे, चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रछिया रियाए, तो देग तेग फते बिरद की पै पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी।

बिगन ना लागे को पौड़ी, भगता का बोलिया परवान है। दरगह पवै थाए भगता तेरी टेक, रते सच लाए जिसनो होए कृपाल, तिसका दुख जाए। भगत तेरे दयाल,

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथमा भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास वी सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौन दयावै ताए। सब थाई वे सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई वे सहाय दसां पातशाहियां जी दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

चित्त आवन का सदका सर्व सुख होए जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षे आ रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री सा।

मत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे।

कबीर सात समुंद मस्करो कलम करो बन रहे वसुदा का विद जा करो हर जस लिखन ना जाए सजन सचा पात साह सिर सहां देसाह।

बलिहारी कुछ तपस्या तेरा तना जाई लिख रहा जात मैं जो जोत मैं जाता कल कला पर पूरा है तू सच्चा साहिब सब सवाल जिनकी

कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कीआं वडियाईया, तुदवण सिद्दीक ने ना पाईया, करम मिले नाही ठाक रहाईया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देहें तिसे क्या चारा, नानक सच सवार नहारा, आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखणे औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चली हैं दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए, रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए, ना ओह मरे ना होवै सोग, दिंदा रहे ना चुकै भोग, गुणे हो होर नाही कोई, ना को हो आ ना को होए, जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जैना देन करके कीती रात, खसम सारे ते कम जात, नानक नावे बासनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमारी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलें त्रिपता सही, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखया लखास, धन धन सत संगत जितार रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवहे उद्दम, जा आहर हर जियो प्रया, सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरया, मेरे माधो जी सतसंगत मेरे सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया, रहाओ जनन पिता लोक सुत बैंता, कोई न किसकी तरया, सिर से रिजक समाहे ठाकुर, कहे मन पौ करया, उड़े उड़े आवे सै कौंसा, तिस पाछे बचरे शरया, तिन कवण खलावे कवण चुगावे, मन में सिमरन करया, सब निधान दस अष्टस दान, ठाकुर कर तल त्रया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पर भरिया।
सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जइए तेरा अंत न पर व्रया। राग आसा महला चौथा सुपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुपुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख विसार नहारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चो जवडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना तू पार बिरंबे अंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव हैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी तेनों टूटी जमकी फांसी जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन से भया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तपता पही जपही बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी करके रे अखट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे बड़ावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नौ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछड़या संयोगी मेल जिसना तू जाना है सोई जन जाने
हर गुण सद ही आख बखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर्व रड़े फैले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकजों मोह पग नहीं चाले, हम देख तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूढ़ मना, हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, पणवत नानक तिन की शरणा, जैन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पाजे केवल नाम, श्रंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, अमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काबो हो, आभाद मुहे बचावो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोरक्षा निज कर दे करिए, सबैर इनको आय संग्रिये, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अमर ना त्याऊं, जो बर चाहो सदम ते बाऊं, सेवक सिख मार तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लो मुहे रखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सवलोक सवारा,

अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी दे कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने घड़ घड़ के पड़ पड़ की जाने जवद करख करा कर तारा प्रजा तरत तव देह अपारा जब या करख कर तुहों कबहू तुम मैं मिलत देह धर सबहू जीते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जान तो बेद पेद अर अलम रंकार निर्विकार निरलंब आदि अनिल अनादि संभ तका मूढ़ उचारत पीता जाको पेवना बाबत वेदा तको कर पाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव ड्रंकार का चीनत नैव आप अपनी बुधै जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुम्रा लखा न जय पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा इक्कै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उतपुज खान बहर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट पयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपाओ अजुगा स्वरूप स्वयं भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बारे असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणगाता ये आस्तुजे तव शरणी बरे तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताकि काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जहे न हरयो ताकि ताप तन कमय हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट सहा शवय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहें ओबारा जिन नारे नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मो हो सहाई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर ठोर मो हो सहाई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई सवैया पाए गहे जाते तुम्हारे तब ते को आंख तरह नहीं आने हूँ।

रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पाण कृपा तुम री कर मैं ना कह हो सब तो ही बखाने दोहरा सगल दुआर कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तोहार सगल दुआर कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया शब्द तंगाव हरी गेरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा करदा तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर दे रहे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संत हो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंश तिद कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर थारिया पंच दू तुद बस कीते काल कंटक मारिया और करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तें सुख होआ तित कर अनाहद बाजी आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाए आ उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे
सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये स्रसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर रे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर रे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जिको खावे जिको पुंचाए तिसका होए उदारो एह वस्त जी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पाया मेरा मत होई

कोई न जाने तुमरा ऊचे ते सगल समगरी तुमरे तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम ही

दोहरा गया पहिया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

राम रमहौ बड्ड भागी हो, जल थल मैयल सोए, नानक नाम अरद्दिया, बिघन लागे कोए, पौड़ी भगतां का बुलिया परवान है, दरगाह पवें थाए, भगता तेरी टेक रते सच नाए, जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए, भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रैण इको इक ते आए।

0: कि इन्हां नूं ये जिहड़ा सलता ये जिहड़ा सतलुज दरिया पार नहीं करन दिता, पर सलता तरी सुखैना आप सौखे ढंग नाल इनू पार कीता।
1: पार गुरु जुत सिंगण सब दल उरे मलेशी सैना।
0: कवि जी कहिंदे पार गुर जुत सिंगण सब दल, गुरु महाराज दे समेत सारे ही सिंह ये दरिया नू पार कर गए। उरे उरे भाव उर आर वाले पासे मलेश सैना, जिन्नी भी ये मलेशां दी सैना सी तुरक भाव ये सब उरार ही रह गए हन।
1: सलिता बिखे प्रवेशन चाहत परै तीर अरगोरी।
0: हुण गुरु महाराज ते गुरु का खालसा इधर किनारे ते तुरक इस किनारे ते, जेड़ा जेड़ा अगे वधन दी कोशिश करदा है उधरों तीरां दी वरखा ऐसी करदे आ कि कोई भी

0: सच्चा सब तान सच्चा सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
1: वडी वडियाई जा बटन आओ वडी वडियाई जा सच ने आओ वडी वडियाई जा नहीं चल थाओ वडी वडियाई जाने लाओ वडी वडियाई बजे सा पाओ वडी वडियाई जा पुछना दात वडी वडियाई जा आपे आप नानक कारण कतनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दू जाए हो जग सच्चे की है कोटड़ी सच्चे का विच्च बस एक नाव कम स्माइल।

0: जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: गुर अमरदास परसिया पहम पातिक विनाशा। गुर अमरदास परसिया सिद्ध साधिक आसास। गुर अमरदास परसिया ध्यान लहिए पहमुक। गुर अमरदास परसिया अपौलभ गह चुक। एक बिन दुगन जो तो रह जास मंत्र मानवे लह। जाल पा

देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव।

वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर राम द

याद सना हो ज्ञान है आसन चढ़ो त्रमत नख कर गयो भगत सील है सर लड़ो पै निरपो हर अटल मन शब्द गुर ने जा गड़ेओ काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंडेओ पलो पुहाल ते जोतना निरपत नाथ नानक बर गुर अमरदास सच सलपण ते दल जितो।

जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख शरण परे ते उबर छोड़ जमपुर की लिख भगत पाए परपूर हृदय उचरै करतारै गुर गोहर दरियाओ पलग डुबंत तारै नानक कुल निमल अवतरियो गुण

कित संसार किरण रव सुरतर साख उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाख जन्मता इहु सक्याथ जित नाम हर हृदय निवास सुर नर गण गंधर्व छेद।

हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर पर गासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया घट घट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबै विचार हो, वाहो वाहो का बड़ा तमासा, गुरमुख संगत सबै विचार हो, वाहो वाहो का बड़ा

नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिए सजन सचा पात साहो सिर सहां दे साहो जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसा

फेरन सिर उड़ उड़रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पो रहता आप छड़े तरती ना।

सहसा गुणा सोब करे संसार चोरा जारत कूड़ियार खरा बावे का एक होदा खा चले अथाऊ।

अमृत उपजगत संजमे जाए हो मैं दीर्घ रोग है दारू पीस माहे। कृपा करे जी अपनी ता गुर का शब्द कमाहे, ता गुर का शब्द कमाहे, ता गुर का शब्द कमाहे। नानक है सुनो जनो इत संजम दुख जाहे।

0: नानक जंत पाए कसम माले सबना जिन करतै करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता कर जिन उपाया जग तिस जोहारे स्वस्थ तिस तिस दी बाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख निकियां चंगाइयां लख पुना परवान लगता पेपर तीरता सहजोग बेबान चुरतन संग्राम रण में छुड़े प्राण लख सुरतीला ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ प्राण जिन करते करना की अलखे आवण जान नानक मति मिथिया कर्म सचा ने सान